101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तृतीय तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती हमारी आज के प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ।

0: प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जल डमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र

FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का कथन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदनवार में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 229 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार एसएल कंडारा। इस कार्यक्रम का 7वां भाग आज आप सुनेंगे समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी आप सुनेंगे। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से। 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। दस बजे से पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। समय 10 बजे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग और 12:05 से समय होगा यादों की महफिल का। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का। 2:30 से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे।

चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग आप सुनेंगे। संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। वक्त हमने बताया 4 बजे दिन में। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने लेकर आएंगे। छह 6:35 से वक्त होगा भक्ति रचनाओं का संध्या रंजन में। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर हाजिर होंगे। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग सुनिएगा। 8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी वो कैसी होगी, लेखक सुधा जौहरी, निर्देशक एच.एस. व्यास। 9 बजे से प्रोग्राम होगा आपके लिए। 9:30 से आज के फनकार और 10 बजे से छाया गीत आप सुनेंगे। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी। पंडित जी, रागों की चर्चा हो रही है। पिछली कड़ी में हमने राग शंकरा की बात की, आज राग मिश्र खमाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जयंत जी, ये बहुत रेलेवेंट और बहुत आपने अच्छा चयन किया, क्योंकि शंकरा बहुत गंभीर राग है
1: जी,
2: जबकि मिश्र खमाज लाइट प्रकृति का राग है। सुगम संगीत में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है
1: जी जी।
2: और ठुमरी दादरे में मुख्य रूप से खमाज में ठुमरी गाई जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: और लाइट म्यूजिक का सबसे प्रिय राग है ये मिश्र खमाज।
1: हाँ,
2: ठुमरी दादरा में बनारस और पटियाला, ये दो स्कूल बहुत बड़े स्कूल रहे हैं
1: जी।
2: पटियाला में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे मुनव्वर अली खान, अजय चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद पंडित, ये सब लोग उस परंपरा को फॉलो करते रहे
1: जी।
2: जबकि बनारस घराने की जो स्टाइल है ठुमरी, उसमें सिद्धेश्वरी देवी और महादेव प्रसाद मिश्रा, उनके पहले मौजुद्दीन खां, और बड़ा उनका इतिहास
1: जी।
2: लेकिन जो उसके बाद जो कलाकार मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है, वो गिरजा देवी जी, और गिरजा देवी जी के बाद सिद्धेश्वरी देवी, या उनकी समकालीन कह लीजिए आप, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, जो इस परंपरा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो उनके साथ मैंने कुछ कॉन्सर्ट संगत की थी, तो मुझे भी उनके गाने की बड़ी मन में उनका गाना बैठा, तो उनकी परंपरा से मैं एक ठुमरी पेश करना चाहता हूँ आज। मिश्र खमाज
1: स्वागत।

0: क्या बात है पंडित जी, जैसे जैसे इस ठुमरी के स्वर गूंज रहे थे मन में गीत उभर रहा था फिल्म बुढ़ा मिल गया।
1: अरे बहुत अच्छा मन्नाडे साहब का गाना,
0: मन्नाडे साहब का गाना है
1: बिल्कुल,
0: आयो कहां से घनश्याम
1: बिल्कुल।
0: और ये शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीतकार राहुल देव बर्मन। यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
1: जरूर।

0: मिश्र खमाश पर आधारित बुढ़ा मिल गया फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

धरती माता, ये था फिल्म का नाम। पंकज मलिक, उमा शशि, केएल सहगल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पंकज मलिक ने संगीत दिया और पंडित सुदर्शन ने इसे लिखा है।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 7:30 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम का समय होगा 8:15। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या हम लेकर आएंगे प्रातः 8:30 से, जिसमें आज की बात होगी कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। साथ ही भेंटवार्ता सुनिएगा थायराइड और मोटापा, जानकारी देंगे डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा। इनसे बातचीत की है संजय धर द्वेदी ने।

0: बजे का समय होगा व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का समय होगा 9:30 अवधि लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 12:30 से 1 बजे से आप सुनेंगे फेसबुक पर आधारित हमारा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दिन में 2 बजे का समय होगा कार्यक्रम गीतांजलि का 2:30 से हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना जिसमें आज चर्चा होगी कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा लोक सुरमाला। साथ ही इसी कार्यक्रम में कुछ घरेलू सुझाव भी आप सुनेंगे। शाम 5 बजे का समय होता है युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी का जिसमें आज चर्चा होगी राजनय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गीत संगीत के साथ व्यक्ति विशेष में आज बात होगी पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पर। साथ ही खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम होगा खेल संसार। पांच बजकर 30 मिनट से आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय होगा 6:10 लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे 6:30 से किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत 6:45 से जिसमें चर्चा होगी खरीफ फसलों की तैयारी। साथ ही इस कार्यक्रम में वार्ता सुनिएगा खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों की उन्नत खेती पर जानकारी देंगे सहायक प्राध्यापक फसल अनुसंधान केंद्र मसौदा डॉक्टर बुद्ध भारती। रात्रि 8:15 से सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 से सुनिएगा गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का समय होगा 9:30। साथ ही समाचार अपने निर्धारित समय पर प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं कार्यक्रम विवरण के बाद समय हो चला है प्रादेशिक समाचार का जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
3: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
4: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
5: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
6: निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
7: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
8: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
9: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में SIT और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश, कहा आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
1: हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन परिजनों को। तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
0: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एसआईटी का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

0: जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
1: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में SIT और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित SIT ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो।

0: लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र को FM 101.9 MHz पर। आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुन सकते हैं प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने। बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है अमृत कलश। अमृत की रसधार भक्ति के रूप में बहती है इस कार्यक्रम में। साथियों, भक्ति में अपार शक्ति होती है। ये केवल एक भावना या विश्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो मनुष्य को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। तो फिर चलते हैं कार्यक्रम के पहले भजन की तरफ, जिसे अपनी आवाज़ दी है कैलाश, अनुज, पीयूषा और मधु ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला भजन।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। श्रोताओं, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति विधाता के साथ जुड़ता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और कल्याण प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं।

0: फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
4: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अमृत कलश। और अगला भक्तिमय पुष्प हम अर्पित कर रहे हैं निशा और सोली कपाड़िया के स्वर में।

श्रोताओं, मन में भक्ति भाव के उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक अवगुण दूर हो जाते हैं और उसके आचार विचार व्यवहार शुद्ध होने लगते हैं। तो अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में लता मंगेशकर की आवाज में ये भजन।

0: लता मंगेशकर के गाए से भजन के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते,
4: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
3: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
4: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
3: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
4: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
3: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त

0: किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की, कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगू के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threat for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश

0: सरकार जो वहाँ पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से

0: हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई

0: व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिल्ली से समाचार के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र को FM 101.9 MHz पर। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी ये रेडियो साथी तबस्सुम जहां। पेश है कार्यक्रम में पहला

0: श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।
1: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुर संगम। और अब आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। एक से एक दशमलव नौ मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है विविध रंगीय कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर, कटेहरी, अम्बेडकर।

0: नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: दोस्तों, मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी सुनने वालों का। आप सभी को तबस्सुम का नमस्कार। साथियों, जिस तरह नदी के दो किनारे मिलकर नदी की धारा को दिशा देते हैं, ठीक उसी तरह महिला और पुरुष दोनों मिलकर परिवार को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। साथ ही पुरुषों के साथ महिलाएं भी अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान और नेतृत्व को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। इस विशेष दिवस की शुरुआत 2022 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है ताकि राजनयिक भूमिकाओं और शांति निर्माण में महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को मान्यता दी जा सके। साथ ही निर्णय लेने के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के फैसलों में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है और उनके ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करना है। 24 जून याद दिलाता है कि कूटनीति सिर्फ सूट बूट वाले ही का काम नहीं है। जब तक मेज पर साड़ी सूट वाली आवाज नहीं बैठेगी, तब तक दुनिया के आधे दर्द की दवा नहीं मिलेगी। इस दिन युवा महिला IFS अफसर स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों को बताती हैं कि ये कुर्सी तुम्हारे लिए, जी हाँ, उनका आत्मविश्वास और उत्साहवर्धन करती हैं। और जब हम महिलाओं में उत्साह होगा और दोनों मिलकर, महिला और पुरुष दोनों मिलकर परिवार के साथ साथ देश में भी समान भागीदारी देंगे, तो मधुबन खुशबू तो देगा ही।

0: श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से अंतराल का और हाजिर होते हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर।
1: वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
2: आपके संदेश,
3: संदेश से आते हैं
2: आपके गीत,
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में।

0: ऐप पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में हम बहुत सी जानकारियां भी देते हैं, तो आज जानकारी लेते हैं थायराइड और मोटापा के बारे में। जानकारी देंगे डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा, इनसे बातचीत की है संजय धर द्विवेदी ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
2: श्रोताओं, अब एक रोग जो थायराइड है वो हर व्यक्ति के जुबान पर है, और हम देखते हैं कि समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे सबके जुबान पर ये आता जा रहा है। पहले कोई इसे जानता नहीं था, और थायराइड से ही जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं। जैसे कोई कहता है कि थायराइड हो गया तो दुबले हो गए, कोई कहता है मोटे हो गए। वाकई थायराइड क्या है, क्यों होता है, और क्या सच में हम लोग इसके वजह से दुबले होते हैं, मोटे होते हैं, इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ एंड्रोकाइंड और ब्रेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा जी को। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद देवेंद्र जी, नमस्कार, और आप सबको नववर्ष की बहुत।
2: सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो थायराइड की चर्चा की जाती है, तो ये वाकई थायराइड है क्या? क्या ये रोग है या कुछ और है?
3: द्विवेदी जी, आपने जैसे प्रारंभ में बोला कि थायराइड रोग, तो थायराइड के रोग होते हैं। थायराइड जो है वो रोग नहीं है, वो जो है एक ग्रंथि का नाम है।
2: एक ग्रंथि का,
3: जो एक एंडोक्राइन ग्रंथि, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि, जो हमारे आपके गले में होती है सामने, और वो एक हार्मोन बनाती है जो हमारे आपके शरीर में बहुत सारे रोल प्ले करती है। तो उस ग्रंथि से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएं हैं जो थायराइड की बीमारियां होती हैं।
2: यानी थायराइड जो ग्रंथि है उसमें अगर कुछ विकृति आती है
3: जी,
2: तो उसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती
3: है। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये एक तितलिकाकार की ग्रंथि है जो गले के सामने होती है। इसका मुख्य काम होता है थायराइड हार्मोन बनाना, और वो थायराइड हार्मोन अगर अपने ऑप्टिमम मात्रा में बनता रहता है तो वो शरीर पे प्रभाव डालता है नॉर्मल। बट अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो कुछ बीमारियां होती है जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
2: अगर घट जाती है, जितनी निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकलती,
3: बनाने की क्षमता कम हो जाती है ग्रंथि की, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यही ग्रंथि कभी कभी कुछ स्थितियों में हार्मोन ज्यादा बनाने लगता है कुछ ऑटोइम्यून कारणों से। तो उस स्थिति में जो है उस हार्मोन के बढ़ने के कुछ लक्षण शरीर में दिखते हैं
2: जी।
3: वो हाइपरथायरॉयडिज्म वाली बीमारी होती है। तो कम होने वाली हाइपोथायरॉयडिज्म वाली बीमारी होती है,
2: और बढ़ जाने वाली हाइपरथायरॉयडिज्म।
3: और कभी कभी आप देखते होंगे कुछ मरीज जो है वो गले में सामने घेंगा लेके
2: आते
3: हैं, घेंगा जिसको गोइटर कहते हैं, वो भी थायरॉयड ग्रंथि में गांठ बनने की वजह से घेंगा बन जाता है। तो बीमारी हार्मोन के नियंत्रण की हो सकती है, या उसमें आकार में परिवर्तन आने की वजह से घेंगा उत्पन्न हो सकता है।
2: यानी ऐसा थायरॉयड और कुछ नहीं है, बल्कि इसके घटने और बढ़ने से होने वाले रोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं
3: जी। लेकिन इसमें सबसे कॉमन बीमारी जो होती है वो हार्मोन कम बनने वाली क्षमता होती है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसीलिए सब उसको थायराइड की बीमारी, थायराइड बीमारी कहते हैं। मतलब थायराइड हो गया मुझे, तो जो थायराइड हो गया मुझे कहते हैं, वो अधिकतर हाइपोथायरॉयडिज्म
2: है। तो सर, इसका कुछ लक्षण भी आता होगा शरीर पर, कैसे जानेंगे कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया?
3: जी देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन सब मरीजों में लक्षण नहीं आते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज ने रूटीन टेस्ट कराया, उसका थायराइड हार्मोन का टेस्ट उस रूटीन टेस्टिंग में हुआ। जैसे लोग मास्टर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, उसमें पता है सारे बॉडी के चेकअप हुए, उसमें थायराइड का टेस्ट भी हुआ, और थायराइड के रिपोर्ट कुछ गड़बड़ आई। तो उस स्थिति में वो हो सकता है थोड़ा सा जो है वो अपने रेंज से बाहर हो और लक्षण नहीं आ रहे हो। इसको हम लोग जो है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। मतलब सब क्लिनिकल मतलब बिना लक्षण पैदा किए हुए वो कुछ उसके ब्लड टेस्ट में गड़बड़ा रही है। और एक होता है ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि इतना थायराइड हार्मोन बिगड़ा है कि उसके हार्मोन के बिगड़ने की वजह से जो शरीर में उस पे
2: अनिद्रा की समस्या होने जी प्रकट हो जाती है,
3: दिखना शुरू होते हैं। अब थायराइड हार्मोन का ही काम करता है वो शरीर में,
2: बिल्कुल,
3: और उसकी वजह से कई प्रकार के लक्षण बनते हैं, सिर्फ एक काम नहीं है उसका। तो थायराइड हार्मोन जैसे अलग अलग अंग पे काम करता है, जैसे हमारे आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में, हमारे आपके नर्व्स के रिफ्लेक्सेस के लिए, मांसपेशियों के ठीक काम करने में इस पे रोल है, डेवलपमेंट में बच्चों के रोल
2: जी।
3: उसके अलावा हमारे आपके मुख्यतः हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना,
2: जो पचता है अपचता है इसमें काम करता है
3: ना, मांसपेशियों का ठीक काम करना, बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब महिलाओं के मासिक धर्म को रेगुलेट करने में मदद करता है, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी, किडनी पे भी उसका इफेक्ट होता है कि किडनी में फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, हड्डियों पर प्रभाव डालता है।

0: हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसके हार्ट के काम करने की क्षमता, इन सब पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा
1: इसका प्रभाव है,
0: थायराइड हार्मोन का रोल है।
1: यानी शरीर के प्रत्येक अंग पर कहीं ना कहीं ये अपना रोल जो है वो निभाता रहता है।
0: तो स्वाभाविक है, अगर कोई एक हाइपोथायरॉयडिज्म का मरीज है और लंबे समय तक हाइपोथायरॉयड है या उसका थायराइड हार्मोन बहुत कम बन रहा है, तो हर ग्रंथि से संबंधित कुछ ना कुछ लक्षण हो सकते
1: लक्षण हो सकते हैं। यानी जैसी स्थिति बनेगी उस तरह का लक्षण ये शरीर पर प्रकट करेगा।
0: सबसे कॉमन लक्षण समाज में लोग समझते हैं कि अगर मुझे थायराइड है तो मोटापा हो जाता है।
1: जी, ऐसा सुनते हैं लोग।
0: जी, ये बात सत्य है कि हाँ मोटापा क्योंकि में इसका रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी थायराइड हार्मोन बिगड़ा हो तो वो हर बार मोटापा उसी की वजह से है। मोटापा अधिकतर केसेस में, मोटापा क्यों होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो मेटाबॉलिक रेट मतलब उसके खाना पचाने की क्षमता और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से चर्बी ज्यादा इकट्ठा होती है, किडनी पे इफेक्ट पड़ने की वजह से किडनी से जो फिल्टर होकर पेशाब बननी होती है वो कम बनती है, तो थोड़ा पानी का रुकाव होता है। तो ये सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। बट ये मतलब इसका नहीं, जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं कि अब TSH के नॉर्मल रेंज ऊपर 5 है तो वो अगर 6 या 7 होता है
1: तो
0: सोचते हैं कि हमारा मोटापा उसी कारण से है। तो ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। तो अधिकतर मोटापा होने का सबसे कॉमन कारण जो है वो लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो।
1: यानी हमारे श्रोता ये जान लें, अक्सर ही देखता हूँ कि जैसे कोई मोटा व्यक्ति बोले भाई आपने थायराइड चेक करवाया,
0: जी
1: वो तुरंत उसी से जोड़ता है, लेकिन ये जोड़ना ठीक नहीं है
0: क्योंकि मोटापे के और कारण
1: और कारण है। जी,
0: डायबिटीज एक बहुत मुख्य कारण है, जीवन शैली एक बहुत मुख्य कारण है, थायराइड भी एक कारण है, लेकिन वो जैसे हमने सब क्लिनिकल वाली बात बोली, सब क्लिनिकल मतलब जब लक्षण ही नहीं है तो मोटापे का लक्षण भी थायराइड की वजह से होने की संभावना ना के बराबर।
1: डॉक्टर प्रतीक महर्जा जी, इसके पहले कि हम आगे बढ़े
0: जी
1: किन्हीं और चीजों के बारे में जाने,
0: जी
1: सबसे पहले तो मेरे मन में आता है कि आखिर ये थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है हार्मोन ये घटता बढ़ता क्यों है? इसका कारण हमारा खानपान है, हमारी लाइफस्टाइल है, हम स्वयं हैं, या शारीरिक स्थिति के कारण ऐसा?
0: नहीं, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म के कई कारण होते हैं। नॉर्मली थायराइड हार्मोन जो बनता है वो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं जिनसे हार्मोन बनता है,
1: सीक्रेट होता है।
0: अब वो सीक्रेट करता है, वो कितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होता है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट हर बार चेंज होती रहती है,
1: बिल्कुल
0: प्रेगनेंसी में चेंज होती है, जब बढ़ते उम्र में चेंज होती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब उसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो फेज ऑफ लाइफ के हिसाब से हार्मोन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन कारण है, उसके कई कारण होते हैं
1: सर।
0: कुछ प्राइमरी कारण होते हैं मतलब थायराइड ग्रंथि में ही कोई समस्या हो
1: सर,
0: या कुछ सेकेंडरी कारण होते हैं जैसे मतलब ऊपर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस जो ऊपर जहां से रेगुलेट होता है थायराइड सेक्रेशन उसमें दिक्कत हो। सबसे कॉमन कारण है वो एक प्रकार का एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसको कहते हैं कि हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, मतलब कि जो ग्रंथि में जो फॉलिकल्स हैं वो ठीक तरीके से
1: काम नहीं
0: कर पा रहे हैं ऑटोइम्यून प्रोसेस की वजह से, और हार्मोन नहीं बनता है और फिर उससे लक्षण पैदा होते हैं। उसके अलावा बहुत कॉमन कारण है, बहुत सारे लोग जानते भी कि हाँ आयोडीन की कमी, इसीलिए हम लोग जो है आयोडाइज नमक खाने की सलाह देते हैं जिससे कि जो हमारे शरीर को प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत है वो नमक के ही प्रकार से ही हमको मिल सकता है। तो आयोडीन की कमी बहुत बार होती है, लोग खड़ा नमक खा रहे होते हैं है ना, या सेंधा नमक खा रहे होते हैं, आयोडीन नमक नहीं खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आयोडीन डिफिशियंसी भी एक कारण होता है। कभी कभी कुछ दवाइयां या कुछ खान पान जो है वो इसको बढ़ावा देते हैं, जैसे कुछ लिथियम वाली दवाइयां होती हैं, या कभी बहुत लोग जो है कुछ ऐसे पदार्थ खा रहे होते हैं जैसे पत्ता गोभी शलजम बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हो, तो कभी कभी उसका भी थोड़ा बहुत असर दिखता है,
1: बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खा रहे हो तो
0: थोड़ा बहुत खाने की मनाही नहीं होती है। तो ये तो कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्मोन जो है वो वहां से बनना कम हो सकता है। उसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जिनका कभी गले में किसी कारण से रेडिएशन हुआ हो, किसी और बीमारी के लिए कोई रेडिएशन दिया गया हो, या कोई ऐसी जगह रहते हो जहां पर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, तो उससे थायराइड ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है, तो उसको हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। या कभी किसी का घेंगा ऑपरेट हुआ है तो थायराइड ग्रंथि निकाल दी गई है, तो उस स्थिति में जो है वो हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री तो निकाली दी गई है,
1: तो फिर उसके लिए
0: हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता
1: है। सपोर्ट देना ही हो
0: तो वो जो मरीज का ऑपरेशन किया जाता है तो उनको फिर दवा पे हम लोग पहले ही शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई जिससे कि लक्षण ना आने पाए। और ये तो हो गया प्राइमरी कॉजेज मतलब जो थायराइड से संबंधित, और सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जो ऊपर मस्तिष्क में हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो सारे एंडोक्रीन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, तो वहां से अगर कुछ समस्या है कि TSH ठीक से नहीं बन रहा है, उसके ऊपर TRH होता है वो ठीक से नहीं बन रहा है, तो वो भी कारण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। एक कारण नहीं होता,
1: बहुत सारे कारण हैं।
0: जी जी
1: सर, आप जब कोई पेशेंट आता है आपके पास क्या देख के जान जाते हैं या कुछ जांचें भी छोटी मोटी कराते हैं?
0: बिल्कुल कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला अधिकतर पेशेंट्स में वो जो है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, या कुछ हल्के फुल्के लक्षण होंगे, या ऐसे लक्षण होंगे जो और बीमारियों में भी पाए जाते हैं, बट सुबह मरीज को एग्जामिन करने से भी होता है। तो उस स्थिति में हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट द्वारा देखते हैं कि थायराइड हार्मोन की क्या स्थिति है और कैसा बन रहा है, कितना है, और उसके अलावा उसके कारण के लिए कुछ जांचें करते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया

0: और ऑर्गन्स को वो इन्वॉल्व करता है, तो उस हिसाब से हमको और भी जो डायबिटीज को भी स्क्रीन करना पड़ता है, हड्डियों पे कितना इफेक्ट है, कभी अगर हार्ट पे इफेक्ट पड़ने की संभावना रहती है, तो इन सब चीजों के लिए जांच करते हैं। बट मुख्यतः पहले थायराइड हार्मोन कितना गड़बड़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म
1: उसको नियंत्रित करते
0: देख के उस हिसाब से आगे हम लोग।
1: जब पेशेंट आपके पास आ जाता है और आपको ये लग जाता है कहां वाकई इनको थायराइड की प्रॉब्लम है
0: जी,
1: तो आप उसको इलाज करते होंगे
0: जी जी,
1: किस तरह से ये इलाज आगे बढ़ता है, कैसे कंट्रोल करते हैं आप
0: जी? देखिए जैसे मैंने इसमें बताया कि हार्मोन कम बन रहा होता है, ग्रंथि अगर है भी और वो हार्मोन बना रही है लेकिन जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम बना रही है, तो हम लोग को एक गोली के आकार में थायराइड हार्मोन बाहर से मरीज को देना पड़ता है कि वो एक गोली निहार मुंह अपना रोज खाए। अब उसकी डोज इस तरीके से टाइट्रेट करनी पड़ती है कि कभी थायराइड ग्लैंड जो उसके गले में है उससे हार्मोन कम बन रहा है, कभी ज्यादा बन रहा है, कभी उसके शरीर की रिक्वायरमेंट कम है ज्यादा है, तो समय के साथ हमको जो है इसकी गोली का डोज टाइट्रेशन करना पड़ता है कि जब जरूरत कम है तो उस हिसाब से हम दवा घटा देते हैं और जब जरूरत ज्यादा है तो उस हिसाब से दवा बढ़ाते हैं। तो एक बार किसी को दवा लिख दी है तो वही दवा जीवन भर नहीं चलनी चाहिए,
1: ऐसा नहीं,
0: बहुत सारे मरीज गलती करते
1: हैं। बिल्कुल करते हैं सर, कि वो महीनों महीनों डॉक्टर के पास दवाई लिख दी
0: और वो आते हैं तो उसके साथ हम लोग को कुछ और दवाइयां देनी पड़ती है, जैसे वो हड्डियों पे अफेक्ट कर रहा होता है या हार्ट पे अफेक्ट कर रहा होता है या साथ में डायबिटीज हो गई है या उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो उन सब के साथ थायराइड की दवा के साथ हमको कुछ और दवाइयां ऐड करनी पड़ती हैं, किस एज में मरीज है उस हिसाब से डिसाइड करते हुए। तो सिर्फ एक गोली नहीं देनी होती है, गोली
1: के साथ
0: और भी साथ एडेड ट्रीटमेंट्स करने होते हैं।
1: प्रतीक मरुदा जी, क्या आप सोचते हैं कि एक पेशेंट को कितने जल्दी जल्दी अपने डॉक्टर के लिए जाना चाहिए या लंबी अंतराल नहीं करना
0: चाहिए? देखिए अधिकतर मरीजों में तो बहुत सारे मरीज हम लोग से पूछते हैं कि थायराइड की दवा शुरू हो जाएगी तो बंद होगी कि नहीं होगी, तो लगभग 90-95% मरीजों को तो बहुत, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट कारण हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है, तो उस स्थिति में लंबे समय तक इलाज करने की जरूरत पड़ती है। बट 5-10% मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें हम लोग धीरे धीरे दवा बंद कर ले जाने की स्थिति में रहते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए हम लोग मरीज को अंतराल पे देखते रहना पड़ता है, 3-6 महीने में उनकी दवा की
1: डोज
0: को हम लोग को जो है टाइट्रेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो मरीज को फॉलोअप में बुलाते हैं जैसे कि उनकी डोज टाइट्रेट करते रहे। और इसमें ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ी सी सावधानी हम लोग यही बताते हैं कि मरीज को जब एक बार दवा लिख देते हैं तो अपने हिसाब से दवा ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब ये कम हो गया कर लेते हैं, अब ये बढ़ गया ऐसे कर लेते हैं,
1: ये नहीं करना चाहिए।
0: इस दवा के साथ थोड़ा सा सावधानी ये बरतने की जरूरत है कि ये अगर दवा शरीर को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पहुंचेगी तो वो हड्डियों पर और हार्ट पे इफेक्ट डालती है, कम पहुंचेगी तो बहुत सारे लक्षण पैदा करेगी। तो इसीलिए उसको ऑप्टिमम डोज में, मतलब जितनी मरीज को रिक्वायरमेंट हो दी जाए, उसके लिए आपको विशेषज्ञ से मिलकर
1: रहना चाहिए। अगर दवा लंबे
0: तो लक्षण साइड इफेक्ट अगर ज्यादा खा रहा है तो साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। अब मरीज ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दवा उतनी ऑप्टिमम पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और ज्यादा पहुंचती है तब साइड इफेक्ट होते हैं, वरना ये एक नेचुरल हार्मोन है जो अगर रिक्वायर्ड मात्रा में खाया जाए तो साइड इफेक्ट नहीं करती।
1: सर, अगर हम अपने जो श्रोता है उनके लिए जानना चाहें कि और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि एक तो आपने बता दिया कि दवाएं अपने मन से प्रयोग न करें,
0: सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जैसे हम लोग आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मोटापा
1: जी,
0: तो लोग सोचते हैं कि हम दवा ले लेंगे तो हमारा मोटापा कम हो जाएगा या हमारा थायराइड कंट्रोल हो जाएगा तो मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ी सावधानी इसके साथ ये है कि मोटापे के और कारण जैसे अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना, कैलोरी इनटेक कम रखना,
1: फास्ट फूड ना लेना,
0: फास्ट फूड
1: कम लेना,
0: कम लेना। हाँ। मना तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम खुद भी कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन कम लेना।
1: हाँ।
0: नियमित तौर से व्यायाम करना
1: सर,
0: मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, ये सब साथ में करते हुए आप नॉर्मल तरीके से दवा खाएंगे तो आपका इन दवाइयों का और इन ट्रीटमेंट का इफेक्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। सिर्फ दवा के भरोसे एक वजन कम हो जाए ये रखना एक भ्रम है।
1: भ्रम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक नियमित अंतराल पर अपने चिकित्सक से जरूर मुलाकात करते रहें ताकि दवाइयों का डोज ठीक से निर्धारित हो सके।
0: और एक लास्ट में बात करना चाहूंगा कि स्वयं अपनी डोज का रेगुलेशन
1: ना करें। डॉक्टर प्रतीक मल्होत्रा जी, आप वरिष्ठ एंडोक्राइन और ब्रेस्ट विशेषज्ञ हैं, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को आपने थायराइड और मोटापा इन दोनों को लेकर के काफी जानकारी दी। इसके लिए आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से, हमारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, ये थे डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा जिन्होंने जानकारी दी थायराइड और मोटापे के बारे में, और इनसे बातचीत की थी संजय धरतवेदी ने। और कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में अब चलते हैं एक गीत की तरफ।

0: और श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं समाचार पत्रों की तरफ और जानते हैं वो हेडलाइंस जो बनी हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अमर उजाला की खबर है, तपिश भी नहीं डिगा सकी आस्था, भंडारों में जुटी भीड़। ज्येष्ठ के आखिरी मंगल पर गूंजे बजरंग बली के जयकारे। हनुमान मंदिरों में सुबह से लगे श्रद्धालुओं की कतार, चढ़ाया चोला अर्पित किया सिंदूर। जलस्तर घटने से घाटों से दूर हो रही सरयू। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं तक।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: प्रणाम अयोध्या। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध रंगीय कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। FM 101.9 MHz पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब आइए सुनते हैं व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
5: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी तबस्सुम जहां आपके इस कार्यक्रम को लेकर। तो श्रोताओं, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हमको हर रोज़ प्राप्त होते हैं और हम शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो

के संदेशों को शामिल करते हैं। जिला सिद्धार्थनगर गांव जाखोली से हैं नसीबुल हसन और रुस्तम चौधरी। आपने पसंद किया है फिल्म कुली का ये गीत शबीर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुनते हैं हर रोज सुबह 9:09 से। श्रोताओं आप भी शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में अपने नाम और अपने पसंद किए गए गीत के साथ। व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं ताकि आप भी शामिल हो सकें, हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकें। तो व्हाट्सएप नंबर है 830-32-19-911। कृपया अपने व्हाट्सएप संदेश में सबसे पहले कैपिटल लेटर में ASAG अवश्य लिखें, उसके बाद फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम और पता लिखकर शामिल हो जाएं अगले दिन के कार्यक्रम में। और अगला गीत आप सबने पसंद किया है फिल्म आराधना से। इस गीत को अपनी सुमधुर आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत SD बर्मन का। पसंद है हमारे इन श्रोताओं की। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं हमारे श्रोता PS नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आराधना से।

0: साथियों, अपने इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
6: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
6: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
5: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
5: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी।

0: आकाशवाणी अयोध्या।
1: हेलो
2: सुनो टेलीफोन नंबर,
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत आप सबने पसंद किया है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद है आप सबकी। गांव ओजपुर तगा सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। आप सबके लिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

हाँ दोस्तों, जिंदगी है एक सफर सुहाना। बिल्कुल, ये सफर और भी सुहाना हो जाता है जब आपके मैसेजेस हमको मिलते हैं और हम शामिल करते हैं, और आपको याद दिलाते चलें कि इस कार्यक्रम के ठीक बाद आपके लिए लाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर डायल करिएगा और जरूर जुड़िएगा। नंबर है 7376804090। और अब शामिल करते हैं अपने अगले श्रोता को। हमारे श्रोता हैं लाल माता रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। आप सबने सुनना चाहा है छुपा रुस्तम का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: स्वागत अभिनंदन सभी सुनने वालों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो अयोध्या। आप सभी के साथ हूं मैं आपकी रेडियो साथी तबस्सुम जहां आपके इस कार्यक्रम को लेकर। तो इस कार्यक्रम का आपको नंबर बता देते हैं ताकि आप फोन मिला सकें और बातें कर सकें और अपनी पसंद का गीत सुन सकें। नंबर है 7376804090। और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं लाइन पर। हेलो,
4: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना शुभ नाम बताइए।
4: मेरा नाम गीता।

0: डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र, कैसे है मैम आप?
1: जी बहुत अच्छे, आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। आप बताइए आपका क्या हाल है?
0: हमारे हमारे जिले के अंदर बहुत बरसात हुई मैम, हमारी हम तो किसान भाई है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। और आज बुआई चल रही है मैम कपास, सोयाबीन, मक्का की।
1: जी जी तो आप कह सकते हैं कि अन्नदाता हैं, मतलब बहुत लोगों का समझ लीजिए कि पोषण किसानों के जरिए ही होता है। जी और बताइए, आकाशवाणी अयोध्या के साथ कब से जुड़े हुए हैं?
0: मैं तो आज ही तो 2 महीने हो गए मैम, मैं तो मई और जून को जुड़े मैम, मैं तो नया होता है, आज 2 महीने हो चुके हैं मैम मुझे।
1: अच्छा,
0: बहुत बहुत शानदार का दर्जेदार कार्यक्रम होते हैं मैम अयोध्या के, गुंडार और मजेदार प्रोग्राम होते हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है मैम।
1: बहुत शुक्रिया आपका। और फेसबुक पर जो कार्यक्रम आता है उसमें शामिल होते हैं?
0: जी मैम, जी मैम, कभी कभी होता है, कुछ कुछ काम रहता है मैम, किसान भाइयों के आज सुन सकते हैं लेकिन शामिल नहीं हो सकते मैम।
1: जी किस फिल्म का गीत आज सुनेंगे?
0: मुझे आपके आज के कार्यक्रम में सुनना है मैम, चांदनी तेरे मेरे वो तोते, मीठे मीठे गीत नितवा, ये गाना सुना दो मैम।
1: ये चांदनी फिल्म का है ये गाना?
0: जी मैम, जी मैम।
1: इसमें एक मितवा करके दिखाई दे रहा है, तो ये गाना सुनवा देते हैं आपको।
0: धन्यवाद मैम,
1: जी फिर फोन जरूर करिएगा।
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रोता हमारे, तो इनकी पसंद पर फिल्म चांदनी का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रोताओं आप भी इंजॉय करिए इस गीत को।

0: जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन गीतों की महफिल सजी है और साथ ही प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं हमारे श्रोताओं से। नंबर है 73-76-80-40-90 और यही नंबर डायल करके एक श्रोता है लाइन पर, करते हैं इनसे बातें। हेलो
1: हेलो, मेरी प्यारी सी मैम को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: जी आपको भी हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
1: मैम कैसी हैं आप?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपका हम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, और मुझे आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते।
0: बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी बात कही कि आपका कार्यक्रम भी अच्छा लगता है और आप जुड़ी हुई हैं, आप जो है फोन भी करती हैं।
1: मैं अपना परिचय बताना कि वहीं जानी पहचानी श्रोता पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीश टू शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: जी पिंकी जी, और बताइए क्या करती हैं?
1: मैम घर पे रहते हैं, घर के काम करते हैं और
0: आपका जी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है और कभी कभी कट जा रही है, थोड़ा नेटवर्क में रह के फोन किया करिए तो और अच्छा।
1: नेटवर्क इशू होगा इसलिए शायद आवाज में कुछ प्रॉब्लम
0: जी जी
1: है।
0: जी आज किस फिल्म का गीत आप सुनवाएंगी हम सबको?
1: मैम मुझे केसरी मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए, तेरी मिट्टी में मिल जावा। और मैम ये सॉन्ग मैं अपने सभी जो मतलब लखनऊ में हादसा हुआ है अग्निकांड में, उन सभी छात्राओं को समर्पित करती हूँ मैम, और सतत नमन, साथ में श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ।
0: जी तो आपको ये गीत हम सुनवा दें?
1: ठीक है मैम।
0: जी जी बहुत शुक्रिया आपका, फिर फोन करिएगा पिंकी जी।
1: ठीक
0: जी, तो श्रोताओ ये थी पिंकी जी और ये सुनना चाहती हैं केसरी फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
2: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप है आकाशवाणी अयोध्या के साथ और सुन रहे हैं फरमाइशी, माफ कीजिएगा, सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना होता है नंबर 7376804090 और यही नंबर डायल करके देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं लाइन पर। हेलो
5: हेलो,
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम प्रशांत यादव है
0: जी। प्रशांत जी, कैसे हैं आप?
5: मैं तो ठीक हूँ।
0: कहाँ के रहने वाले हैं आप?
5: तो ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ।
0: अयोध्या के ही रहने वाले हैं, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, बढ़िया।
5: गर्मी बहुत है, प्रॉब्लम यही है।
0: अरे ये तो मौसम है, बदलता रहता है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है।
5: बारिश हो जानी चाहिए थी
0: जी। जी
5: प्रॉब्लम
0: जी, तो दुआ करिए, दुआ में बहुत ताकत है, दुआ करिए कि बारिश हो जाए, गर्मी से राहत मिल जाए।

0: जी, तो पेड़ पौधे कभी लगाते हैं ताकि, क्योंकि जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पौधे, पेड़ पौधे से ही बारिश आती है, और लगाना चाहिए हमें पेड़ पौधे ताकि जो है हमारा पर्यावरण संतुलित रहे।
1: पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं लोग, बहुत सारे लग रहे हैं, पर तमाम पॉल्यूशन और भी रीजन जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पा रही है।
0: जी, चलिए हम सब कोशिश करें ताकि जो है प्रदूषण ना होने पाए, कम से कम हो, जितना भी रोक सके उतना रोकें, है ना? आज किस फिल्म का गीत
1: और
0: सुनेंगे?
1: मैं इसलिए इस ये मैं गाना सुनना चाहता हूँ लगान मूवी का, जो बारिश वाला सॉन्ग है काले
0: अच्छा,
1: मेघा, क्योंकि
0: जी जी
1: मेरी वाइफ लखनऊ में रहती है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है,
0: अच्छा
1: तो रोज
0: अच्छा यहाँ
1: पूछती है
0: से
1: कि
0: बादल
1: बारिश कब होगी,
0: भेजेंगे
1: बारिश कब होगी। तो
0: जी, यहाँ से बादल भेज रहे हैं गानों के माध्यम से।
1: मैं नहीं, मैं जा ही रहा था लखनऊ, रास्ते में गाड़ी नहीं था, तो
0: जी
1: मैं ऐसे चलता हुआ जा रहा था, मैंने सोचा फोन लगा दूं।
0: जी आपके जज्बे को सलाम कि आप रास्ते में हैं, जा रहे हैं, और फिर भी जो है आपका दिल आकाशवाणी अयोध्या से लगा हुआ है, आपने फोन लगाया, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये गीत सुनवा देते हैं, ठीक है?
1: हाँ जी, गाना सुना दीजिए जिससे बारिश भी हो जाए
0: जी
1: और
0: जी
1: इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए।
0: जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी।

0: सजी है गीतों की महफिल और बातें हो रही हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं से, और देखते हैं हमारे कौन से हैं श्रोता लाइन पर। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते मैम
0: जी, अपना शुभ नाम बताइए।
1: हमारा शुभ नाम राधेश्याम है जी।
0: राधेश्याम जी, कहाँ से आपने फोन लगाया है?
1: हम तो यहाँ कुमारगंज अयोध्या से जी।

0: जी, तो आप आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को सुनते हैं?
1: आज
0: यहाँ से जो प्रसारित कार्यक्रम होते हैं उनमें से कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं?
1: हम तो यही ज्यादा सुनते हैं। हेलो फरमाइए
0: जी, आपने फोन डायल भी किया है तो नंबर बता दीजिए कि इसका नंबर क्या है, ताकि हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकें।
1: वही नंबर है 73-76-80-90-40।
0: 80-40-90। जी
1: अच्छी
0: चलिए, यानी कि आप सबकी जबान पर भी रट गया है ये नंबर। और
1: हाँ जी,
0: बताइए, आपके दोस्त वोस्त तो होंगे बहुत सारे?
1: ऐसा है सर, दोस्त तो बहुत है लेकिन कि मैं बहुत कम यूज करता हूँ जी।
0: अच्छा
1: मैं
0: अच्छा
1: अपने ही काम
0: दोस्ती
1: में
0: का,
1: बिजी रहता हूँ।
0: हाँ थोड़ा सा रिजर्व रहते होंगे।
1: जो हमें टाइम मिलता है तभी दोस्तों के पास बात करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलता तो दोस्तों से बात कहाँ
0: बिल्कुल,
1: करेंगे।
0: टाइम निकाला करिए, जैसे आपने रेडियो के लिए टाइम निकाला उसी तरह दोस्तों के लिए भी टाइम निकाला करिए। किस फिल्म का गीत
1: ये
0: आपको
1: तो
0: सुनवा दें?
1: हमराज फिल्म का जी।
0: हमराज फिल्म का, ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं राधे श्याम जी, फिर फोन लगाइएगा, ठीक है
1: ठीक है जी,
0: जी? नमस्कार।
1: हम तो लगाते रहते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से लगता है।

श्रोताओं, देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन से हैं। हेलो, हेलो,

0: हेलो, लग रहा है हमारे इन श्रोता से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने अगले श्रोता का। श्रोताओं, आप नंबर डायल करिए और शामिल हो जाइए अपने इस कार्यक्रम से। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, अपना शुभ नाम बताइए।
1: अंशिका तिवारी मैम,
0: अंकिता जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: अयोध्या जिला से गुसाईगंज।
0: अच्छा, किस फिल्म का गीत आज आप
1: हेलो
0: सुनेंगी?
1: जी मैम,
0: किस फिल्म का गीत आपको सुनवा दें?
1: मैम धड़कन फिल्म का चाहे
0: धड़कन का कौन सा गाना?
1: जो सुना दीजिए।
0: चाहे जो। और बताइए अंकिता जी, क्या करती हैं?
1: मैम पढ़ाई कर रहे हैं, ट्वेल्थ
0: अच्छा, किस क्लास में हैं?
1: में मैम।
0: 12th में है। क्या बनने का सपना आपने संजोया है?
1: सपना तो है,
0: जी, क्या सपना है, क्या बनेंगी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद?
1: डॉक्टर बनने का है सपना।
0: बहुत अच्छा, यानी कि आप सेवा करेंगी लोगों की। ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है अंकिता जी, फिर फोन
1: जी मैम,
0: लगाइएगा।
1: नमस्ते।
0: जी, बहुत शुक्रिया आपका।

श्रोताओं, चलते चलते इतना ही कहेंगे कि आज हमारे जिन श्रोताओं के पसंद के गीत बजे, जो श्रोता फोन के जरिए शामिल हुए, उन सभी का शुक्रिया। और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अभी दीजिए तबस्सुम को अनुमति इस कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर लमसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
2: बेखबर
3: दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी

0: की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
1: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
0: जी,
1: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
0: जी।
1: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
0: ओहो,
1: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली, और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
0: जी।
1: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
0: जी,
1: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए, और एक दिन इन्हीं दुखों की कोक से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
0: जी। जी,
1: ये 1984 का जमाना था।
0: कितने बड़े थे आप?
1: मैं 71 में पैदा हुआ।
0: ओ, तब तो बहुत छोटा।
1: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
0: काम क्या कर रहे थे?
1: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
0: अच्छा।
1: जो पान में सुपारी खाई जाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
0: जी,
1: थोड़ा
0: जी।
1: सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
0: जी, जी, जी।
1: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
0: हाँ।
1: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
0: रेडियो का स्विच ऑन कर,
1: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
0: बज रही
1: थी और वो

0: गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं। बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर

0: नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की?
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
1: क्या बात है।
0: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: में नहीं रही और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म भरते ही
0: जी।
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है
0: जी जी।
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूं कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्राणी है
0: जी।
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहां रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप के।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
0: चल रही थी।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
0: जी।
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे। और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
0: जी।
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
0: जी,
1: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की
0: जी जी जी।
1: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
0: जी,
1: उसके बगैर मुमकिन नहीं है क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
0: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाए तो।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
0: क्या बात है।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
0: वाह,
1: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
0: वाह वाह वाह।
1: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
0: जी,
1: हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार बड़ा फनकार बनाता है,
0: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।

शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही।

0: दर्द हीरा है, दर्द मोती है।
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है यार।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी
0: का। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था
1: जी जी,
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से।
1: हाँ।
0: एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था।
1: हाँ।
0: जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ।
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में, जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में। तो वो क्या वाक्य है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की
1: जी, शीन काफ निजाम भी आए थे इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
1: कुंडली आपकी पता है। लेकिन अभी श्रोताओं तो कुछ नहीं है।
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीन काफ निजाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी,
0: सब
1: जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी,
0: मुल्क
1: जी,
0: में
1: जी।
0: संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था।
1: हाँ।
0: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे, जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो, प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
1: जी जी।
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म

0: होता जाता है, तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया सीनकाफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे, तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था, और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी,
1: और जावेद प्रूफ करने का,
0: हाँ हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी, सीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी, और मैंने वो पढ़ रखी थी, और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
1: क्या बात है,
0: है ना,
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा,
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी, तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था,
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था। तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे, और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है, उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी, तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है, अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए,
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह,
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए, फिर एक शेर था जो मैंने मालती

0: की नजर कर दिया है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते,
0: नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया है।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी
0: के।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो।
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं पता।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो,
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था।
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन

0: बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं, लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या दस का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
1: जी।
0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
1: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी। अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले, जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया। उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब। फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ। वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी, जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस।
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: हाँ। तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी।
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद
1: फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी, जी।
0: तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने जी। ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है।

0: जी,
1: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
0: बात चल रही थी तुम मिंटू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया है, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
1: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
0: तो रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
1: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: क्या बात है।
1: मुझे सिचुएशन बताई। हाँ। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
0: जी,
1: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
0: वाह वाह।
1: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी
0: है?
1: भी जैसे तू है, है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
0: जी जी।
1: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
0: जी जी।
1: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर।
0: वाह।
1: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
0: क्या बात है।
1: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
0: जी।
1: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
0: क्या बात।
1: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
0: रात कुछ ऐसे कटी है
1: कि सहर ही ना हुई।
0: क्या बात है। वाह।
1: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई,

0: जिस्म से जान के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई। जिस्म से जान के निकलने की खबर ही ना हुई। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

शादी बने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

सुन रहे थे श्री राम भजन चंदन दास की आवाज में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो

0: हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा। नुमाइश एल्बम से पंकज उदास की आवाज है, जफ्फार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: सीमा शर्मा का गाया हुआ ये नगमा हम सुन रहे थे। दलीप ताहिर ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकल

0: जानते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों

0: बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे

0: बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियां भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और सचिन देव वर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत जिसे लिखा है मजरूह सुल्तान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।